0: வந்தே மாதரம்.
1: வந்தே மாதரம் சுஜலா சுஃபலா மலய ஜ சீதலா.

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। स्वागत आप सभी श्रोताओं का

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।

समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा

2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा है कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांग पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोरेन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग बिलासपुर कांगड़ा मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरुला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। वहीं उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुरिये तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्ता से मुकाबला करेंगे। एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 4-0 की हार के बाद वापसी की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:05 हुए हैं। सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। सबसे पहले समूह स्वर में मातृवंदना।

समूह स्वर में मातृ वंदना आप सुन रहे थे। भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना में आप सुनते हैं ये पारंपरिक गणेश वंदना उषा मंगेशकर और साथियों के स्वर में।

आइए अब सुनते हैं साधना सरगम और साथियों के स्वर में डॉक्टर अजय प्रसून की ये रचना

जगजीत सिंह और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे रविंद्र पठानिया की ये रचना। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है। 6:25 हुए हैं, सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। श्रोता, अब से बस कुछ ही पलों में यानी 6:30 से आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। बोले बिस्तर गीत आपको सुनवाएंगे 6:40 से। सुबह सुबह हमारा दैनिक वैचारिक क्रम होगा 7:00। कृषि चर्चा पर आधारित कार्यक्रम कृषि संकेत सुनेगा 7:05 से। आपकी फरमाइश के कुछ फिल्मी गीत लेकर आएंगे। कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत, समय होगा सुबह 7:20। संगीत सरिता कार्यक्रम में गैर फिल्मी संगीत आप सुनेंगे सुबह 7:45 पर। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत सुनेगा 8:15 से। और 8:30 पर आप सुनेंगे पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। लाइफस्टाइल और बीमारियों माफ कीजिए लाइफस्टाइल और बीमारियां कारण और समाधान इस विषय

पर बातचीत करेंगे डॉक्टर विश्व मोहित गर्ग से। जय शेखर, समय सुन लीजिए 8:30। 10:05 से शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रागनी आपको सुनवाएंगे और 10:30 से होगा कार्यक्रम आपकी पसंद। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनेगा 11:00 से और 11:30 से हम रिले करेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

रहेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770 43

0: कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। दोपहर 2 बजे फिल्म संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम, दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से हम रिले करेंगे। शाम 5:30 पर स्टूडियो लौटेंगे और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। सदाबहार गीत होंगे 6:30 से। हमारी शाम की सभा में लोक रंग कार्यक्रम होगा 6:45 पर और 7:20 पर। और 7:30 से आप सुनेंगे कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी, इसे हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले करेंगे। रात्रि 8 बजे चित्रपट संगीत कार्यक्रम होगा और 8:20 पर संगीत सरिता। मन चाहे गीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात्रि 9 बजे और 9:30 से हम रिले करेंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। और अब सुन लीजिए समाचारों का विवरण। संस्कृत में समाचार होंगे 6:55 पर दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार सुबह और शाम 7:10 पर और दोपहर 2:10 पर। इन्हें हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले करेंगे। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा।
1: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और 5वें शुक्रवार को रात्रि 8:30 से। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है 11:30 से 11:30 तक।
0: कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित्रमानस का संगीतमय पाठ, गायक स्वर सुरेश वाडकर का।

राजा जनक की नगरी देखने के क्रम में पुरवासियों के मन मोहते हुए श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ नगर के पूर्व भाग में पहुंचते हैं, जहां धनुष यज्ञ की रंगभूमि की रचना की गई है। जनकपुर के बालकगण बड़े उत्साह तथा आदर के साथ दोनों भाइयों को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। श्रीराम ने अपनी मधुर मनोहर वाणी

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, गायक स्वर था सुरेश वाडकर का। ये आकाशवाणी सागर है। 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सबसे पहले आपको सुनवा रही हैं लता मंगेशकर के स्वर में कैफी आजमी की शब्द रचना। इस गीत को स्वरबद्ध किया है मदन मोहन ने और फिल्म का नाम हकीकत।

आइए अब सुनते हैं कंवर जलालाबादी का लिखा हुआ ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। छलिया फिल्म के इस गीत को संगीत से सवारा कल्याण जी आनंद जी ने।

आइए अब सुनते हैं नौशाद के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है और फिल्म का नाम आदमी।

और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं एक दिल और सौ अफसाने फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। शब्दकार हैं हंसरत जयपुरी और इस गीत को संगीत से संवारा शंकर जयकिशन ने।

श्रोता, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूल विचर गीत संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है, 6:55 होने को है। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रही हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7 बजे हैं, सुनिए हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। जीवन तय की हुई सोच से नहीं चलता, समय जैसी परिस्थितियां लाता है वैसे ही स्वयं को बदलना पड़ता है। कार्यक्रम सुबह सुबह में पुनः एक नए विचार के साथ स्वीकारें चंचल का नमस्कार। श्रोताओं, जीवन में कब कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़े कोई नहीं जानता, लेकिन जितनी सांसें हैं उतना जीवन तो हम सबको जीना है। सभी विपरीत और अच्छी परिस्थितियों के मध्य सामंजस्य बैठाते हुए श्रोताओं, एक मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रेंकल, जिनका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सब कुछ छिन गया, यानी उन्हें जेल में डाल दिया गया और उनकी पत्नी, बच्चे, माता पिता मारे गए। जेल में उन्हें कई यातनाएं दी गईं, पर फ्रेंकल ने हार नहीं मानी, सारी परिस्थितियों से लड़ते रहे। जब उन्हें रिहा किया गया तब विक्टर फ्रेंकल एक महान मनोचिकित्सक और लोगोथेरेपी के संस्थापक बने, और उनके विचारों का केंद्र था मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी जीवन का अर्थ खोज सकता है। उनके विचार थे कि जीवन का अर्थ परिस्थितियों से नहीं, हमारे दृष्टिकोण से जुड़ा है। परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण काफ़ी हद तक हमारे हाथ में होता है, और हर परिस्थिति में कोई ना कोई अर्थ खोजा जा सकता है। श्रोताओं, जब जीवन कठिन लगने लगे तब केवल यह सोचने के बजाय कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यह सोचना अधिक उपयोगी हो सकता है कि इस परिस्थिति से हम क्या सीख सकते हैं। मनुष्य के पास चयन करने की स्वतंत्रता होती है। बाहरी परिस्थितियां बहुत कुछ छीन सकती हैं, लेकिन अपने विचारों और प्रतिक्रिया को चुनने की क्षमता मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। सुख को सीधे पाने की कोशिश करने के बजाय अर्थपूर्ण जीवन जीना महत्वपूर्ण है, और जब व्यक्ति किसी उद्देश्य, जिम्मेदारी या प्रेम से जुड़ता है तो संतुष्टि स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाती है। श्रोताओ, दुख हमेशा अर्थहीन नहीं होता। फ्रेंकल का विचार था कि जिस पीड़ा को बदला नहीं जा सकता उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर भी मनुष्य उसके भीतर अर्थ खोज सकता है। भविष्य के लिए अच्छी उम्मीद मनुष्य को शक्ति देती है। और श्रोताओ, अंत में आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ दीजिए कार्यक्रम सुबह सुबह से अनुमति।

0: आप सुन रहे थे दैनिक वैचारिक्रम सुबह सुबह। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है।
1: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770442297।
2: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
0: आकाशवाणी सागर से सुबह सुबह कार्यक्रम आप सुन रहे थे। 7:05 हुए हैं, सुनते हैं कार्यक्रम कृषि संकेत। आज आपको सुनवा रहे हैं बुंदेलखंड में फूलों की खेती से लाभ। इस विषय पर जानकारी देंगे हमारे आज के विशेषज्ञ श्री राजेश मिश्रा।
3: अपने क्षेत्र में फूलों की खेती में किसान भाई गेंदा, ग्लेडियोलस और नोरंगा गैलार्डिया की खेती से अच्छा लाभ ले सकते हैं। इस क्षेत्र में विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में गैलार्डिया नवरंगा की खेती की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि गैलार्डिया का फूल वर्ष भर उपलब्ध रहता है। गैलार्डिया पुष्प को नवरंगा के नाम से भी जाना जाता है। मौसमी पुष्पों में गैलार्डिया एक महत्वपूर्ण पुष्प है। इसके पुष्प पीले, नारंगी, लाल, तामिया, मिश्रित गहरे तामिया आदि विभिन्न आकर्षक रंगों में आते हैं, जो बहुत ही लुभावने होते हैं। ये इसकी मांग बाजार में अच्छी रहती है, खासतौर पर जब ग्रीष्म काल में अन्य व्यावसायिक पुष्पों की उपलब्धता लगभग नगण्य रहती है, तब मात्र यही एक पुष्प है जिसकी बाजार में उपलब्धता प्रचुर मात्रा में रहती है। बाजार में पुष्प उत्पादक अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं। यदि इसे ग्रीष्मकालीन फूलों का राजा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः गर्मी, बरसात, सर्दी तीनों ही मौसम में आसानी से इसे उगाया जा सकता है। संपूर्ण भारतवर्ष में इसकी व्यावसायिक कृषि सफलतापूर्वक तथा विभिन्न मौसमों में की जा सकती है। इसके विस्तार की प्रचुर संभावनाएं हैं। फरवरी मार्च में बुवाई करने पर फूल गर्मियों में एवं मई जून में बुवाई करने पर बरसात में व सितंबर अक्टूबर में बुवाई करने पर सर्दियों में फूल आते हैं। गैलार्डिया की अच्छी उपज के लिए खुली धूप वाली जगह और जैविक खाद युक्त भूमि उत्तम रहती है। इसकी खेती कृषि शीतोष्ण तथा उष्ण जलवायु में सफलतापूर्वक की जा सकती है। अपने क्षेत्र में भी इसकी अच्छी खेती की जा रही है और किसान अच्छा लाभ ले रहे हैं इसकी खेती से। इसे विभिन्न प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, किंतु बलुई दोमट भूमि जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो अधिक उपयुक्त होती है। भूमि चयन के पश्चात 2 बार अच्छी जुताई कर भूमि समतल एवं भुरभुरी बना लें। बीज को क्यारियों में बोने के लिए क्यारियों को भूमि से थोड़ा ऊंचा बनावें एवं अच्छी निंदाई गुड़ाई कर मिट्टी को भुरभुरा कर किसी पतली लकड़ी की सहायता से हल्की लाइनें खींचें। क्यारी का आकार 3x1 मीटर रखें तथा बीज 5 सेंटीमीटर गहरा बोकर उसे अच्छी तरह मिट्टी से ढकें। बीज को कतार में बोने से निंदाई में आसानी होती है। बुआई के पश्चात सूखी घास को बिछाकर हल्की सिंचाई करें। जब अंकुरण हो जावे तो रखी हुई सूखी घास हटा दें। क्यारी बनाते समय गोबर की पकी खाद अच्छी तरह भूमि में मिलावें। गैलार्डिया के पौधे देर से फूल देते हैं। बुआई के 3.5 से 4 माह पश्चात फूल आने लगते हैं। 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। आवश्यकता अनुसार बीज नर्सरी की क्यारियों में एवं प्लास्टिक ट्रे में मिट्टी के तसलों में भी बोए जा सकते हैं। बीज बोने के पूर्व किसी फफूंदी नाशक दवा जैसे थायरम या बाविस्टिन से उपचारित करें। बुआई के 4 से 6 सप्ताह बाद पौध खेत में रोपाई के लायक हो जाती है। इसमें प्रमुखतया 2 समूह होते हैं किस्मों में। गेलार्डिया पिक्टा, इसके फल बड़े व एकल होते हैं, अतः इनका व्यावसायिक महत्व कम होता है। इसकी प्रमुख किस्में इंडियन चीफ, पिक्टा मिश्रित आदि हैं। दूसरा गेलार्डिया लोरिजियाना, इनके फूल दोहरे होते हैं, यह व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयुक्त होती है। इसकी प्रमुख किस्में सनशाइन, गेंदी डबल मिक्स, डबल टेट्रा आदि हैं। गेलार्डिया की किस्म ग्रैंडी फ्लोरा प्रजाति गाल्विन व्यावसायिक उत्पादन हेतु बहुत प्रसिद्ध है। इसके फूल पीले, नारंगी व लाल होते हैं। इसके फूलों का बाजार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है।
0: बुंदेलखंड में फूलों की खेती से लाभ, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे राजेश मिश्रा। कृषि संकेत कार्यक्रम आपने सुना आकाशवाणी सागर से। 7:10 होने को है अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में करेंगे शक्ति की सप्तधारा संकल्प अभियान पर चर्चा। भोपाल के रविंद्र भवन में आज होगा समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ। प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना के क्रियान्वयन में डिंडोरी जिला देश में प्रथम। और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने चीन के शी युची को हराया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में शक्ति की सप्तधारा संकल्प का नेतृत्व करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की कार्य योजना, लखपति दीदी योजना के विस्तार और किसानों तथा ग्रामीण समुदायों के हित से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा होगी। इस बैठक का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए स्पष्ट और क्रियान्वित की जा सकने वाली कार्य योजना में बदलना है। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान, लखपति दीदियां, कृषि यातक और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर आज रविन्द्र भवन भोपाल में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही प्रदेशव्यापी समरसता संकल्प अभियान और कलश यात्रा का भी शुभारंभ होगा। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए पावन कलश रवाना किए जाएंगे। अभियान के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से प्रदेश, जिला और ग्राम स्तर पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस अभियान के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालयों पर 20 अगस्त को कलश वंदन और सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद पावन कलश को कलश रथ में स्थानीय रविदास मंदिर और ग्राम स्तर तक ले जाया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक जिले में 20 अगस्त से 10 सितंबर तक निर्धारित मार्ग पर कलश रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ उद्योग निवेश संवर्धन की सर्वोच्च सेंट्रल बॉडी की बैठक में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। मुख्यमंत्री ने यहां राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास तथा कार्यान्वयन ट्रस्ट की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की तीसरी बैठक में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ने देश दुनिया के सभी निवेशकों का विश्वास जीता है और आज मध्य प्रदेश पूरे देश में निवेशकों के सर्वाधिक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है।
1: जिस प्रकार से देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ऐसे समग्र रूप से देश को समृद्धशाली बनाने के लिए जो सबसे उत्कृष्ट भाव से काम हो रहा है, मैं कई सारे कामों के साथ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला हमारा ये रोजगार परक उद्योग है, जिसके माध्यम से न केवल देश समृद्ध होगा बल्कि राज्य भी कदम से कदम मिलाकर के न केवल समृद्धि के मार्ग पर चलेंगे बल्कि हर वर्ग के कल्याण के लिए इसी में से मार्ग निकलेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है, जो कि उद्योग जगत के हम पर बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्य प्रदेश की निवेश क्षमता, उद्योगों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं और केंद्र तथा राज्य सरकार के समन्वय से विकसित की जा रही औद्योगिक परियोजनाओं की जानकारी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में बैठक की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी परीक्षा प्रक्रिया को ऑडिट कराने और सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन में डिंडोरी जिले ने देश के 100 चयनित जिलों में जुलाई माह में प्रथम रैंक प्राप्त की है। ये उपलब्धि जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित 36 योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और प्रभावी समन्वय से प्राप्त हुई है। इस योजना के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि, सिंचाई और कृषि अधोसंरचनाओं को मजबूत करने तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। गौरतलब है कि डिंडोरी जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, वनोपज और ग्रामीण आजीविका पर आधारित है। जिले में प्राकृतिक और जैविक खेती के साथ श्री अन्न मिलेट्स के उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिले में 34,700 हेक्टेयर क्षेत्र में कोदो कुटकी की खेती की जा रही है, जिससे 52,282 कृषक परिवार तथा 14 कृषक उत्पादक संगठन सीधे जुड़े हैं। जिले के पारंपरिक कोदो कुटकी उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त होने से इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। भारत सरकार की नागरिक उन्मुख पहल रिफॉर्म उत्सव के अंतर्गत जनमंथन विमर्श समाधान के माध्यम से नागरिकों से प्राप्त प्रणालीगत सुधार संबंधी सुझावों के प्रभावी संकलन, जिला स्तर पर नागरिक सहभागिता और जन जागरूकता तथा

इसी क्रम में मुरैना जिले के थाना जौरा पुलिस ने गुम हुई चार नाबालिग बालिकाओं को 24 घंटे के भीतर जीआरपी सूरत के सहयोग से गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन से सकुशल पहुंचाया गया। नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के 21 वर्षीय आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युजी को हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गईं। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां लगातार जारी हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के रीवा बालाघाट सहित 12 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल इंदौर उज्जैन जबलपुर नर्मदापुरम ग्वालियर और सागर संभागों के जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बारिश का दौर बना रहेगा। FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टरडम में खेला जाएगा। आपको समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा आज विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। सतना जिले में कल सावन के तीसरे सोमवार को शहर से लेकर गांवों तक शिवालयों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। दिन भर मंदिरों में हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। वहीं खंडवा की धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर में भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और भगवान ममलेश्वर की पारंपरिक भव्य सवारी निकाली गई। सवारी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जबलपुर की ऐतिहासिक मदन महल की पहाड़ी पर वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और संग्रहालय का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अतिक्रमण के कारण करीब दो साल से रुका प्रोजेक्ट जरूरी जमीन खाली होने के बाद आगे बढ़ा है। बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड के ग्राम कुंडेकसा अडोरी कुरका और बांद्री में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए बच्चों में से 133 बच्चे स्वस्थ होकर अपने गाँव लौट गए हैं। शेष बच्चों का उपचार जारी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता स्वीकारें चंचल का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की ये पहली फरमाइश व्हाट्सएप संदेश हमें ये प्राप्त हुए हैं, गांव और डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से। जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर मालियान सरगना मेरठ से, अनिल जैन, जीवीएम जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और बहुत सारे मित्रगण, आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं रफू चक्कर फिल्म से ये गीत शैलेंद्र सिंह और कंचन के स्वर में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मनचाही गीत कार्यक्रम की अगली फरमाइश इन श्रोताओं की। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू, थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। आप सभी श्रोताओं ने सुना चाहा चुपके चुपके फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाज़ दी लता मंगेशकर ने।

0: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या, कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: अगला गीत सुनना चाहा इन श्रोताओं ने, जिला नांदेड़ इताला से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, राखी, तृप्ति और दुर्गेश्वरी जायसवाल, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं सावन को आने दो फिल्म से ये गीत यसुदास के स्वर में।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। संदेश के बाद आइए फरमाइश पूरी करते हैं इन श्रोताओं की। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार, चंदन सावित्री देवी, चंदन मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन। आप सभी ने सुनना चाहा मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से ये गीत आशा भोंसले के स्वर में।

और कार्यक्रम के अंत में फरमाइश पूरी करते हैं इन श्रोताओं की। कवर कॉलोनी बड़बाह खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली अडार नादगांव छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा, आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं याराना फिल्म से ये गीत किशोर कुमार के स्वर में।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मंच जाएगी संपन्न करने के दीजिए अनुमति। ये आकाशवाणी सागर है, 7:45 हुए हैं। संगीत सरिता कार्यक्रम में कुछ गैर फिल्मी गजलें। सबसे पहले आपको सुनवा रही हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में पयम सैदी की ये गजल

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: संगीत सरिता कार्यक्रम में गैर फिल्मी गजलें आपको सुनवा रहे हैं। आइए अब सुनवाती हैं फैज़ अहमद और फना निजामी की ये गज़ल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं पंकज उधास के स्वर में जफर गोरखपुरी का ये गुलाम।

पंकज उदास के स्वर में जफर गोरखपुरी की गजल आपने सुनी। इसके साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है, 8 बजने को है अगला प्रसारण, कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC, CGL परीक्षा और निजी एजेंसी TDPL द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है, और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में JPSC और JSSC उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC, CGL परीक्षा 2024 और TDPL एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष

0: बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी मटेरियल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद कैबिनेट ने जैसे सीरियल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससीसी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने यह सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमेरिकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। ये प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
4: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
5: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
6: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी यू की को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी टेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख्य पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिंदुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद एनटीए ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्ता ने नाग पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विद्यार्थियों के जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर 1 और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यू को हराया। इसके साथ आकाशवाणी

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं देशराज पटेरिया से ये झूला गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लोक संगीत कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं रामचरण यादव और साथियों से ये पाई।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लोक संगीत कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं केशव प्रसाद सुलेरे से ये वर्षा गीत।

0: लोक संगीत कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाए देशराज पटेरिया, रामचरण यादव, केशव सुलेरे और उनके संगीत साथियों के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। आज के पॉडकास्ट का विषय है लाइफस्टाइल और बीमारियां, कारण और समाधान। इस विषय पर आज हमारे मेहमान डॉक्टर विश्वमोहित गर्ग से बातचीत करेंगे। जय शेखर, आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा भागदौड़ देखने को मिलती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है रुक कर दो पल कि हमारे जीवन से ज्यादा क्या व्यस्तता हो सकती है? हमारे खाने पीने से ज्यादा क्या व्यस्तता हो सकती है? हमारे स्वास्थ्य से ज्यादा क्या व्यस्तता हो सकती है? जब हम ही स्वस्थ ना होंगे तो हमारी व्यस्तता किस प्रकार हम पर हावी होगी? हमारी दिनचर्या में सब चीज बदलती जा रही है। जब हम व्यस्त होते हैं या व्यस्त होने का दिखावा करते हैं तो लगातार हम चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और जब ऐसा होता है तो हम एक चीज के लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकालते, ना तो अपने स्वास्थ्य के लिए और ना ही अपने खाने पीने के लिए। आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कि कैसे हम अपनी व्यस्तता को सीमित करते हुए, कैसे अपने स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए हम अपने जीवन, हम अपने लाइफस्टाइल से होने वाली जो बीमारियां हैं उनको कैसे रोक सकते हैं, और वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे खान पान से, जो हमारे व्यायाम ना करने से ये बीमारियां हो सकती हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर में हमारे साथ, हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विश्वमोहित गर्ग साहब। आप जिला चिकित्सालय सागर में मेडिकल ऑफिसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाइफ स्टाइल क्या है आखिर हमारी, क्या

0: होनी चाहिए। और
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइफस्टाइल यानी जो जीवन हम रोजमर्रा के जीवन में जी रहे हैं, जो खान पान हम खा रहे हैं, जैसी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या खाने के बाद हम सो रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, यही सब हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा होता है
0: जी। तो हमारे जो जीवन की दिशा बदल गई है, तो पहले बीमारियां जो 50-60 साल की उम्र के बाद हमें देखने को मिलती थी, आज वो बहुत जल्दी जल्दी हमें देखने मिल रही, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा?
1: जी, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने हमारे खान पान पे ध्यान देना छोड़ दिया है। आप गौर करेंगे कि जो खाना हमारा 50 वर्ष पहले होता था, जिसमें मिलेट्स होते थे, मोटे अनाज होते थे, प्रोटीन्स होते थे, जिसमें दालें हम खाया करते थे, आज वह बदल गया है। आज वो थाली जो है वो पिज्ज़ा बर्गर से बदल चुकी है, पेटीज से बदल चुकी है। आजकल हम लोगों ने बहुत ही कम उम्र से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उसको पिज्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, पेटीज चाहिए। ये सब के सब आप गौर से देखेंगे तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मतलब मैदा। सबसे हानिकारक चीज यदि इस संसार में कोई है जो इस वक्त पे हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रही है, वह है मैदा। अब इसमें दूसरा तत्व एक और जो सम्मिलित है, वो यह है कि हम खाते तो हैं, परंतु जो एक्सरसाइज, जो कसरत हम पहले किया करते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, प्रातःकाल उठ के सबसे पहले उनका नियम रहता था कि वो कसरत किया करते थे। पर आज के युग में आप देखोगे कितने प्रतिशत, कितने लोग हैं ऐसे जो सुबह उठ के कसरत करते हैं, बहुत ही कम। आप देखेंगे सिर्फ 5-10% लोग हैं ऐसे हैं जो कि कसरत किया करते हैं, व्यायाम को अपने नियमित जीवन में आजमाते हैं। हाँ। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एक तो हमारा खान पान बदल गया है, दूसरा हमने एक्सरसाइज कसरत करना एकदम छोड़ दिया है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी जो बीमारियों की जड़ है वो है डायबिटीज, शुगर, शक्कर की बीमारी, गांव में जो लोग कहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें इस पूरी बीमारी के बारे में भी बताएं कि ये बीमारी क्या है, कैसे होती है और इसे हम अपने जीवन को बदल के कैसे रोक सकते हैं।
1: देखिए, डायबिटीज जो है वो एक तरीके से मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है। मल्टीफैक्टोरियल डिजीज मतलब अकेला शक्कर नहीं, बस में उसमें अनेक कारक ऐसे होते हैं जो आपको शुगर पैदा करा सकते हैं। शुगर मतलब आपके रक्त में शर्करा की मात्रा, शुगर की मात्रा का बढ़ जाना। अब यह कैसे बढ़ सकती है? यह दो तरीकों से बढ़ सकती है। डायबिटीज मुख्यतः दो तरीके की होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज मतलब व्यक्ति के अंदर कुछ अंदरूनी ऐसी चीज है जिसके अंदर उसके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज बन गई है और उनके अंदर इंसुलिन एक ऐसा हॉर्मोन जो कि हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में ब्लड शुगर का पूरी तरह मेंटेनेंस करता है। अब यदि किसी के अंदर इंसुलिन ही नहीं है तो ऑब्वियसली उसके ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ये तो हो गया टाइप 1 डायबिटीज, जिसका सिर्फ और सिर्फ इलाज इंसुलिन है कि आप इंसुलिन उसके अंदर नहीं है, आपने इंसुलिन लगाया, व्यक्ति को आपने ठीक कर दिया। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे, जो है टाइप 2 डायबिटीज, जो सबसे ज्यादा कॉमन है आजकल इंडियंस में। आप मानो तो करीबन 14 करोड़ भारतीय हैं जो अभी डायबिटीज से सफर कर रहे हैं आज की स्थिति में। उसका कारण है व्यक्ति के अंदर मोटापे का डेवलप होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस का डेवलप होना। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब उस इंसुलिन हार्मोन को हमने काम करने से रोक दिया। अब काम करने से कैसे रोक दिया? तो काम करने से हम बहुत सी चीजों से रोक सकते हैं। यदि हमने खाने के पश्चात कसरत नहीं करी, थोड़ा हमने वॉक नहीं किया, तो भी उसको रोक दिया हमने काम करने से। यदि हमने खान पान में बहुत मैदा की चीजें खाई, बहुत रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाए, तो भी हमने उसको काम करने से रोक दिया। क्योंकि जब हम रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं या हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारी तोंद जो है, जो हमारी सेंट्रल ओबेसिटी है, वो तोंद निकल के आती है। वो तोंद जो निकलती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है और यह इंसुलिन रेजिस्टेंस अपन को डायबिटीज प्रदान कर देता है। जो टाइप 2 डायबिटीज है उसका प्रमुख कारण ही इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने का कारण है व्यायाम ना करना, खान पान में मैदा का अधिक सेवन करना, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना, सलाद ना खाना, फाइबर रिच डाइट ना लेना, प्रोटीन इंटेक ना करना, ये सारी चीजें हैं जो, तो ये आपने बताया ना मैंने, मल्टी फैक्टोरियल मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं जो डायबिटीज को पैदा कर।
0: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर विश्व मोहित गर्ग साहब, जो बता रहे हैं कि हमारे लाइफस्टाइल से हम कौन कौन सी बीमारियों का सामना कर रहे हैं और अगर हम अपने दिनचर्या को सुधार लेते हैं तो कैसे इन बीमारियों को रोक सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर कौन सी बीमारी आती है डॉक्टर साहब?
1: देखिए, डायबिटीज के बाद दूसरे नंबर जो है वो है हाइपरटेंशन। आज आप देखोगे अनेक लोगों में बहुत कम एज में, मतलब 20 साल 25 साल में व्यक्ति को उक्त रक्तचाप हो रहा है। उक्त रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन।

0: अनेकों नाम है इसके, लेकिन सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी ब्लड वेसल जो कि खून की वाहिका है वहां पे आपने प्रेशर बढ़ा दिया। अब ये प्रेशर अगेन फिर से वही बात आ जाती है, कैसे बढ़ा दिया, फिर वो इसका कारक निकल के आता है सेम, फिर मोटापा है, वही इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वही यही चीजें हैं जो आपको बीपी को भी बढ़ा सकती है, यही चीजें हैं जो आपको फैटी लीवर कर सकती है। ये सारी की सारी लाइफ आपके दैनिक जीवन से ही शुरू हो रही है। और सबसे अच्छी बात इन बीमारियों की क्या है, वैसे तो कायदे से कोई बीमारी की अच्छी बात नहीं होती, लेकिन बीमारियों की अच्छी बात यह है कि आप इनको पूरी तरह प्रिवेंट कर सकते हो। मतलब यदि आपने अपना जीवन यापन बदल लिया, थोड़ा सा बदल लिया, 10% भी जीवन यापन बदल लिया, तो आप ये सारी बीमारियां रिवर्स कर सकते हो, आप इनको पूरी तरह खत्म कर सकते हो।
1: अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं आप डॉक्टर साहब। इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सी
0: फिर है? फैटी लीवर। फैटी लीवर आपने बहुत से पेशेंट में सुना होगा। आजकल तो आप ये मानो कि हर दो में से एक भारतीय को फैटी लीवर है। फैटी लीवर का मतलब आपका लीवर जो एक यकृत है, जिसको जिगर बोलते हो आप, उस जिगर के अंदर फैट का डिपोजिशन होना। अब वो फैट का डिपोजिशन क्यों हुआ?
1: फिर वही
0: चीज, या तो आपने मीठी चीजों का सेवन ज्यादा किया, वो मीठी चीजें कन्वर्ट होके, जितना भी आपने मीठा लिया था ग्लूकोज, वो कन्वर्ट होके फैट में कन्वर्ट हो गया, और वो फैट डिपोजिट हो गया आपके यकृत में, आपके जिगर में, तो ये फैटी लीवर हो गया। यही फैटी लीवर आगे जाके आपको हार्ट अटैक, आपको लकवा, ऐसी वाली बीमारियां भी दे सकता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा भी है कि लीवर तो खुद भी फैट बनाता है, और अगर हम ऊपर से भी लेते हैं तो फिर ये माल दुगना हो जाता होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लीवर भी हेल्दी फैट बनाता है। लीवर का काम ही है ऑर्गेनाइजेशन पूरा करना। फैट बनाता है, पर वो हेल्दी फैट इसलिए बनाता है ताकि आपकी स्किन में चमक ला सके, ताकि आपके विटामिन डी का सिंथेसिस कर सके, चाहे कि आपके कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कर सके, इसलिए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि विटामिन डी ये बहुत ही जरूरी क्यों है इन सारी चीजों के ऊपर रोकथाम करने के लिए हमारे शरीर में। दूसरी बात ये कि हमारे देश में बहुत तादाद में सूरज की किरणें पड़ती हैं, लोग झुलस जाते हैं धूप से, उसके बाद भी हमें विटामिन डी की कमी क्यों हो रही है?
0: देखिए, इसके दो तीन कारण हैं। एक तो ये कि आपने बोला जैसे बहुत सारे लोग धूप में खड़े रहते हैं, काले भी पड़ जाते हैं, बट उसका रीजन ये है एक्चुअली जो सबसे ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज जिनसे विटामिन डी का सिंथेसिस होता है बॉडी के अंदर, वो मुख्यतः 10 बजे से 3 बजे तक की धूप रहती है। और आप आज देखोगे कॉरपोरेट जगत में, ऑफिसेज में, 10 से 3 के बीच आपको कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो बाहर जाते हुए देखते हैं? लगभग ना के बराबर। तो हम जब बाहर नहीं जाते तो हमें धूप नहीं मिलती, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं मिलती, हमारी स्किन उसका सिंथेसिस नहीं कर पाती, तो विटामिन डी धीरे धीरे हम डिफिशियंट हो जाते हैं। दूसरा, जो विटामिन डी के सोर्सेज रहते हैं वो काफी हद तक नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं। तो कई लोग वेजिटेरियन रहते हैं तो वो सेलफिश या फिश ऑयल इनका सेवन नहीं करते, तो आपको डाइट से भी नहीं मिल रहा, आप बनवा भी नहीं रहे, तो इस तरीके से आपको विटामिन डी कम हो जाता है।
1: जी, और कौन सी बीमारी आती है?
0: जी, अब आपने मुख्य डायबिटीज बोल दिया, हाइपरटेंशन बोल दिया, फैटी लीवर बोल दिया, अब इसके बाद जो मुख्य शिकायत है वो है थायराइड। आपने देखा होगा, तो थायराइड भी कहीं ना कहीं एक लाइफस्टाइल डिजीज ही है, ये भी जीवन यापन से बहुत हद तक प्रभावित होती है।
1: ये कैसे?
0: यदि देखो ऐसा रहता है, यदि आपकी लाइफस्टाइल खराब है, मतलब आपने व्यायाम नहीं किया, तो आपकी थायराइड ग्रंथि कहीं ना कहीं जो थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस है वो नहीं करेगी। थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस करने के लिए वो एक्टिवेट नहीं होगी। बेसिकली थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस जो होता है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए होता है। अब जब आप एक्टिवेट रहोगे ही नहीं तो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं होगी, आपकी बॉडी को ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका वो लाइफस्टाइल डिजीज से रिलेटेड रहता है। तो थायराइड डिजीज भी आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो सकती है। तो चौथी चीज जो है वो है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। बहुत कॉमन है आजकल, नई नई लड़कियां, जो युवा लड़कियां रहती हैं उनमें भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज नाम की, जो कि अब आजकल उसका नाम चेंज हो गया है, पॉली मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम कर लिया PMOS, तो उसका मेटाबॉलिक करने का मतलब ही है, क्योंकि यह भी ऐसी डिजीज है जो आपके पूर्णतः लाइफस्टाइल से बनी हुई है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: पहले आप देखते होगे जो आपकी 10-12 साल की लड़कियां रहती थी, 14 साल की, कितना रस्सी कूदा करती थी, आज आप कितना रस्सी कूदते हुए देखते हो, तो उनका जो एक्सरसाइज करने का तरीका था पहले, काफी फिजिकली एक्टिव रहती थी, आज लड़कियां फिजिकली एक्टिव नहीं रह रही, इसकी वजह से उनका खान पान जो है और एक्सरसाइज ना करना है, ये उनमें पॉली मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम करा रहा है, जिसको पीसीओडी पहले बोला करते
1: जी। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इस वक्त पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर, और डॉक्टर साहब ने बड़े आराम से, बड़े सरल शब्दों में बताया हमें कि कैसे हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन प्रभावित कर रहा है, कैसे उन बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं हम अपने खान पान से, अपने रहन सहन से। तो डॉक्टर साहब, अब आती है बात कि हम अपने खान पान को कैसा रखें जिससे कि इन बीमारियों से हम बच सकें।
0: तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारी प्लेट होती है, एक आम हिंदुस्तानी थाली, उसमें बहुत हद तक कार्बोहाइड्रेट रहता है। कार्बोहाइड्रेट माने आपका जैसे

0: रोटी है वो कार्बोहाइड्रेट है, आपके चावल हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं। तो ये अपन को सबसे पहले तो ये करना है कि आपकी प्लेट में आधा हिस्सा, मतलब 50% हिस्सा सिर्फ सलाद होना चाहिए,
1: जी
0: 50% हिस्सा आपको फाइबर्स यानी सलाद वगैरह लेना है। अब बचा हुआ जो 50% है उसमें आप 25% प्रोटीन ले सकते हो, और बचा हुआ 25% जो है उसमें ही सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट और फैट लीजिए। इस
1: जी
0: तरीके से यदि हम अपनी थाली का ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक हमारी लाइफस्टाइल बदल सकती है।
1: जी अब बात आती है, हमें लगता है कि जब बच्चे रोते हैं घर में तो कई बार उनको पैकेट वाला खाना पकड़ा दिया जाता है, कहीं कुछ चीज है बहुत सारी ऐसी बाजार में उपलब्ध हैं, तो इनको कैसे रोके माँ बाप कि बच्चों को इस लत से कैसे छुड़ाया जाए?
0: देखिए, इनको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है उनको वापस से अपने पुराने उस पे लाएं। मतलब आप जो देखते हैं, यदि बच्चे को किसी चीज का खाने का मन कर रहा है, आप तुरंत उसको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाले, आप उसको सिंपल, अपने अपने क्षेत्र की बात करें तो आप उसको बतिया दे दें बेसन की बना के,
1: हाँ
0: वो सबसे अच्छा है। आप देसी खानों की तरफ उसको
1: खुरमा
0: आकर्षित
1: बतिया
0: करें,
1: बहुत अच्छी चीज
0: बिल्कुल
1: होती थी।
0: बिल्कुल अच्छा है। आप उसको कम उसमें बनाओ, आप बेसन की चीज है वो प्रोटीन
1: हाँ
0: है, आप उसको बतिया खिलाओ,
1: क्या
0: तो
1: बात है
0: कुरकुरी की जगह आप बतियों से उसको चेंज कर दो।
1: ये हमारी पारंपरिक चीजें हैं खाने
0: बिल्कुल,
1: की।
0: आपको पारंपरिक चीजों की तरफ लौटना पड़ेगा, मतलब जो चीजें आप खाते हैं अभी यूजुअली आप उसको बदलना पड़ेगा
1: जी
0: आपको।
1: जी अच्छा अब बात आती है जो सब लोग डरते हैं उस चीज की तरफ जाने से, कि वो है सुबह से उठना और शारीरिक कसरत करना।
0: जी देखो, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। कई बार लोग ऐसे रहते हैं जो बोलते हैं हम सुबह नहीं उठ पाते तो हमारी कसरत नहीं हो पाती, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते। उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि यदि आप सुबह एक्सरसाइज नहीं भी कर पा रहे हैं तब भी आप वक्त निकाल के भोजन के पश्चात, एटलीस्ट इमीडिएटली आफ्टर फूड, मतलब आप खाने के जस्ट बाद 20 से 25 मिनट की कसरत जरूर से जरूर करिए। यह बहुत जरूरी है आपकी हेल्थ के लिए। यदि आप 20-25 मिनट की कसरत रोजाना
1: वो
0: करेंगे,
1: वॉक हो सकती है,
0: बिल्कुल आप वॉक भी कर सकते हो, आप हल्का जॉगिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप, पर आपका टारगेट रहना चाहिए 1 हफ्ते के अंदर 150 मिनट की एक्सरसाइज। यदि
1: हाँ
0: आप 1 हफ्ते में 150 मिनट की एक्सरसाइज करते हो टोटल मिला के, आप यकीन मानो आपको ऐसे परिवर्तन देखने मिलेंगे जिसकी आपने खुद भी कल्पना नहीं करी होगी।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं। डॉक्टर साहब अब बात आती है कि हमारे यहाँ कई बार ये होता है कि डायबिटीज जब लोगों को बढ़ती जाती है या एक बॉर्डर पर होती है, सीमा पर होती है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है, आप नॉर्मल रहिए, खान पान पे थोड़ा ध्यान दें। और उसके बाद फिर वो आदमी जाता है अपने खान पान में परिवर्तन करे बगैर, फिर डॉक्टर साहब उनको दवाइयां लिख देते हैं, हाँ अब डायबिटीज हो गई है, अब ये दवाइयां आपको खानी है।
0: नहीं, बोलते हो आपको डायबिटीज नहीं है, मतलब कि आपका HbA1c 5.8 से 6.4 के बीच है,
1: हाँ,
0: 6.5 अभी नहीं हुआ, मतलब आप
1: हाँ,
0: डायबिटिक नहीं हुए। पर यदि आप प्री डायबिटिक हुए हो तो मैं तो ये मानता हूं कि आपको उस टाइम से ही त्याग ऐसे करने चाहिए जैसे आप डायबिटिक हो, तब जाके आप डायबिटिक नहीं हो।
1: सही कहा,
0: यदि आपने उस टाइम से अपने बिल्कुल, यदि आपने उस टाइम पे अपना त्याग नहीं किया ये खान पान का और आपने लाइफस्टाइल उस टाइम नहीं बदली जब आप प्री डायबिटिक थे, तो आप डेफिनेटली आगे जाके डायबिटिक होने वाले हो 100%।
1: तो श्रोताओं, डरने की बात नहीं है लेकिन सावधान होने की जरूरत। देखिए, लोग खाना पेट भरने के बाद भी खाते जाते हैं, ये कहां तक नुकसानदायक है?
0: ये बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। इससे आपका जो जो फूड इनटेक के बाद जो आपका शुगर स्पाइक आता है वो बहुत हाई हो सकता है, इससे आपको ब्लोटिंग हो सकती है, पेट में भारीपन आ सकता है, आगे जाके फैटी लीवर हो सकता है। तो इस तरीके को आपको अवॉइड करके चलना है कि आपको ये जो है ना कोशिश ये करनी है कि आपके पेट में हमेशा एक रोटी की जगह तो खाली रहे, बहुत जरूरी है। यदि एक रोटी की जगह आप खाली करके चलोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब आपका जो आफ्टर फूड इनटेक के बाद खाने के बाद जो शुगर स्पाइक आता है
1: हाँ,
0: वह भी कम आएगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगा, सारी चीजें इससे कम हो जाएंगी।
1: क्या बात है। तो श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से आप और आपके परिवार के लोग, आपके आसपास के लोग, अगर ये बातचीत आप उनको भी सुनवाते हैं, इस बातचीत का सार आप उन लोगों को देते हैं कि कैसे हम अपने आप को बीमार कर रहे हैं और कैसे हम अपने आप को, अपने जीवन को सुधार सकते हैं रोज की दिनचर्या को बदल के, हमें उम्मीद है कि आज की ये बातचीत आपको बहुत पसंद आई होगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बहुत ही अच्छी बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। आज हमारे मेहमान थे डॉक्टर विश्व मोहित गर्ग साहब, जो मेडिकल ऑफिसर जिला चिकित्सालय में पदस्थ हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। आज के पॉडकास्ट का विषय था लाइफस्टाइल और बीमारियां, कारण और समाधान। इस विषय पर हमारे आज के मेहमान डॉक्टर विश्व मोहित गर्ग से बातचीत कर रहे थे जय शेखर। कार्यक्रम आपने सुना आकाशवाणी सागर से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता में

0: गैर फिल्मी गीत सबसे पहले आपको सुनवाएंगे प्रसून जोशी का लिखा हुआ ये गीत शुभा मुद्गल के स्वर में।
1: Thank you.

का व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें

0: 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297। आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है 11:30 से 11:30 बजे तक।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओ, कार्यक्रम संगीत सरिता में गैर फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। आइए अब आपको सुनवाते हैं ललित का लिखा हुआ ये गीत फाल्गुनी पाठक के स्वर में।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आपका व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए गैर फिल्मी गीत। इसके साथ ही ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर 9 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: उदित नारायण महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में टशन फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। पीयूष मिश्रा ने इसे लिखा, विशाल शेखर का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है।

0: फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

सलाम नमस्ते या था फिल्म का नाम। शान और गायत्री अय्यर की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जयदीप सानी ने इसे लिखा और विशाल शेखर का संगीत।

नमस्ते लंदन, ये था फिल्म का नाम। हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और हिमेश रेशमिया का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। नाम सोचा ही ना था है कि नहीं, अमा कह के बुला लिया एक ने, एजी कह के बुलाया दूजे ने। अबे ओ यार, लोग कहते हैं जब भी यूं जिस किसी के जी आया, उसने वैसे ही बस पुकार लिया। तुमने एक मोड़ पर अचानक जब मुझको गुलजार कह के दी आवाज, एक सीपी से खुल गया मोती, मुझको एक मानी मिल गए जैसे, आह ये नाम खूबसूरत है, फिर मुझे नाम से बुलाओ तो सही।

आज के फनकार कार्यक्रम में हम नाम लेकर पुकार रहे हैं गुलजार को, जो विविध रंगी प्रतिभा के धनी हैं। एक संवाद लेखक, एक गीतकार, एक फिल्मकार, एक कहानीकार, एक उपन्यासकार, एक अनुवादक, एक लेखक। कितने पहलू हैं गुलजार साहब की इस पूरी यात्रा में उनकी शख्सियत के। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में गागर में सागर भरना भी मुमकिन नहीं, गुलजार के सारे पहलुओं पर चर्चा करना भी मुमकिन नहीं।

या फिर ये कहानी शुरू करें वहां से जहां दीना में गुलजार का जन्म हुआ, देश का बंटवारा हुआ और जिंदगी में उथल पुथल आई और जिंदगी उन्हें ले आई मुंबई के बेलसिस रोड जहां एक गैराज में वो काम करते रहे, या फिर वहां से शुरू करें कि बिमल रॉय का साथ मिला और फिल्मों की राहों पर गुलजार हौले हौले कदम बढ़ाने लगे, या फिर वहां से शुरू करें जहां सन 1971 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म निर्देशित की, मेरे अपने।

इस गाने में एक अजीब सा दर्द, एक अजीब सी बेकली, एक अजीब सी तकलीफ छिपी है और इस तकलीफ को वही समझ सकता है जिसने बंटवारे का दर्द झेला हो। इस पीड़ा को वो समझ सकता है जिसे अपनी जड़ों को छोड़कर बहुत दूर आ जाना पड़ा हो और जिसके लिए जिंदगी में पीछे लौटना मुमकिन।

संपूर्ण सिंह गुलजार के दिल में अपनी जड़ों से दूर चले जाने की पीड़ा बहुत गहरी रही है और ये बार बार उभर कर आती भी है। अपनी एक रचना में वो लिखते हैं, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। गुलजार साहब की रचनाओं में कहीं एक उदासी भी है तो कहीं एक उम्मीद भी है। कहीं वो लिखते हैं, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया, तेरी राहों पे रुक रुक कर हमने अपना ही इंतजार किया। क्यों ना आज के फनकार कार्यक्रम में हम गुलजार के उन गानों की चर्चा खास तौर पर करें जो आपको ज्यादा सुनाई नहीं देते। तो फिर 1969 की तरफ अपनी इस गाड़ी को घुमा लेते हैं। एक फिल्म आई तरुण मजूमदार के निर्देशन में जिसका नाम था राहगीर। राहगीर में गुलजार साहब ने कुछ बेमिसाल गाने लिखे और उनमें से एक गाना हेमंत कुमार ने गाया जो कहता है, तुम्हारे नैन देख के सुना है लोग जोगी हो गए हैं। सुनिए।

के थोड़े से कम चर्चित गानों की होती है तो हमें याद आती है एक और फिल्म जिसका नाम है बीवी और मकान। सन 1966 में आई इस फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी थे। भले इस फिल्म का बहुत ज्यादा जिक्र ना हुआ हो, लेकिन जब आप इस फिल्म के गानों को सुनेंगे तो आपको लगेगा इतने प्यारे गाने, पर ये कहां छिपे रह गए थे।

0: जब दोस्त।
1: पर ऐसा नहीं कि इस कार्यक्रम में हम सिर्फ वही गाने सुनाएंगे जो कम चर्चित हैं। चलिए हवाओं पर सवार होकर 1968 की तरफ चलते हैं। देबू सेन की एक फिल्म आई दो दूनी चार। ये फिल्म क्या थी? ये एक बड़ा गड़बड़ झाला थी, इसलिए क्योंकि ये फिल्म ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाटक भ्रांति बिलास पर आधारित थी, जो शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित था। लेकिन इस फिल्म के गाने लिखने के बाद गुलजार साहब, आपको लगा इस फिल्म को दोबारा बनाया जाए? उन्होंने फिर क्या चमत्कार किया वो बाद में। पहले हवाओं पे कुछ नाम लिख दिए जाएं। हवा

दो दुनी चार के गीतकार ही नहीं थे गुलजार, बल्कि ये फिल्म भी उन्होंने लिखी थी। फिर आगे एक चमत्कार हुआ जिसे हम अंगूर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, दो दुनी चार को आगे चलकर गुलजार ने बनाया अंगूर। और अंगूर याद आती है तो क्या याद आता है?

चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गुलजार साहब के निर्देशन की दुनिया का थोड़ा सा और कराते हैं परिचय। सन 1972। आप समझ गए कि बात जितेंद्र, जया भादुड़ी, प्राण और संजीव कुमार के परिचय की हो रही है। आप समझ गए कि बात इस गाने की हो रही है।

भाई ये जो परिचय है इसके बारे में थोड़ा सा और बताना जरूरी है। सन 1972 की ये वो फिल्म थी जहां से हाथ पकड़कर आगे बढ़े गुलजार और राहुल देव बर्मन। गुलजार और आरडी बर्मन का साथ इसके बाद रहा बहुत लंबा और आए एक से बढ़कर एक नगी ने लंबी छलांग लगाकर फिल्म मासूम पर पहुंचते हैं और लकड़ी की काठी पर सवार होकर दौड़ते हैं।

कहीं से भी यकीन नहीं होता कि ये फिल्मी गाना है, बल्कि ये एक नर्सरी राइम का रूप ले चुका है। न जाने कितनी पीढ़ियां दौड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा दुम उठा के दौड़ा गाते हुए बड़ी हो गईं, और फिर पिताओं ने अपने बच्चों को भी यही गीत सिखाया और फिर ये बच्चे भी इसे गाते हुए बड़े हो गए। इस बीच में कुछ और पीढ़ियां आईं, जो जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, जैसे गाने गाते हुए बड़े हुए। गुलजार साहब को बच्चों से बड़ा लगाव रहा और उन्होंने बच्चों के लिए न केवल फिल्में बनाई, बल्कि बच्चों के मुद्दों पर फिल्में बनाने से इतर कुछ किताबें भी लिखी, जैसे बोस्की का पंचतंत्र और दूसरी कुछ किताबें। तो ये तो हुई गुलजार और बच्चों की बातें। अब जरा गुलजार साहब के फिल्म निर्देशन की खुशबू को दूर तक फैलाया जाए। जी हाँ, सन 1975 में आई फिल्म खुशबू, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: राहुल देव बर्मन, गुलजार और आशा भोसले की तिकड़ी का कमाल था, दो नैनों में आंसू भरे हैं, निंदिया कैसे समाए। लेकिन बीच में आए मदन मोहन, जब गुलजार ने फिल्म मौसम के संगीत की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। यहाँ एक और मजेदार बात बताते चलें कि फिल्म मौसम का बैकग्राउंड म्यूजिक सलील चौधरी ने तैयार किया था, जबकि फिल्म मौसम के गाने मदन मोहन ने तैयार किए थे। और इस गाने के बिना कहाँ बीतते हैं हमारे फुर्सत के रात दिन।
1: जाड़ो

गुलजार की इस गीत यात्रा में कुछ ऐसी गाने जो कम सुने गए हैं और एक ऐसा वर्ग है या एक ऐसी पीढ़ी है जो इन गानों से परिचित नहीं है। आइए फिल्म शक का गाना सुनते हैं कुमारी फैयाज की आवाज में। आपको बता दें सन 1976 में

0: हमारे जहन में कौंध रहा है मुंबई शहर, समंदर का किनारा, ऊंची ऊंची इमारतें और उनके बीच दो दीवाने जो आशियाना खोज रहे हैं। न जाने कितने लोगों के लिए बड़े शहरों में आशियाना खोजने की तलाश और उससे जुड़ी हुई मुहिम और जद्दोजहद का ये नगमा है जो हर दिल में धड़कता है। आवाज भूपिंदर सिंह और रूना लैला की, फिल्म का नाम घरौंदा, साल 1977।
1: दो दीवाने शहर में

जिक्र गुलजार के कुछ सुने और कुछ अनसुने गानों का हो रहा है, तो क्यों ना यहाँ एक एल्बम का जिक्र कर लिया जाए। गुलजार, आशा भोसले और आर डी बर्मन ने एक दिन अचानक ये योजना बनाई कि रिश्तों पर आधारित एक नॉन फिल्म एल्बम किया जाए। आखिरकार 1987 में ये नायाब एल्बम आया, जिसका नाम रखा गया था दिल पड़ोसी है। इससे ये रचना सुनिए।

जब भी बारिश का मौसम घिरता है, जब आसमान से झमाझम बरसता है पानी, तो कितने कितने गुलजार साहब के गाने हैं जो हमारे जहन में कौंधते हैं। कितनी पीढ़ियों तक गुलजार का सफर रहा है, इसकी एक मिसाल पहले सुनिए थोड़ी सी बेवफाई फिल्म के इस बारिश के गाने की एक झलक।

जरा सोचिए कि सन 1980 में गुलजार साहब कहते हैं बरसे फुहार, और फिर 21वीं सदी में फिल्म गुरु के एक गाने में वो क्या लिखते हैं, सुनिए।

ऐसी जादुई रही है गुलजार की पूरी सिने यात्रा। इस सिने यात्रा में कभी गोलमाल भी हुआ। जी हाँ, फिल्म गोलमाल, जिसके संवाद डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखे थे। लेकिन इस फिल्म के गानों ने जो धमाल किया कि इस गोलमाल को हम हमेशा याद

0: वाला है।
1: हमने सोचा था कि इस कार्यक्रम में गुलजार साहब के इतने सारे गाने सुनवाएंगे कि आपको लगेगा एक पूरा इंद्रधनुष खिल गया है, और कोशिश भी तो यही है। तो अब आशा भोसले की आवाज में फिल्म सितारा का एक गाना आ रहा है जो जिंदगी की संगीन हकीकत को आपके

गुलजार साहब की इस स्नेह यात्रा का जिक्र करते हुए, उनके गानों की यात्रा का जिक्र करते हुए अब हम सन 1985 की तरफ आ गए हैं। कमाल की बात यह है कि अमीर खुसरो की एक रचना के साथ गुलजार साहब ने प्रयोग किया और फिर बना फिल्म गुलामी का ये गीत।

1988 में गुलजार साहब ने एक नायाब फिल्म बनाई लिबास। भले ये फिल्म ना आ सकी हो, लेकिन इस फिल्म का संगीत रिलीज हुआ और ये लोगों के दिलों की धड़कन बना हुआ है। सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना।

सबसे बड़ी बात ये कि गुलजार साहब खुद को हर थोड़े दिन में रीइन्वेंट कर लेते हैं, एक नए रूप में सामने आ जाते हैं। फिल्म पटाखा का ये गाना सुनिए, आपको यूं लगेगा जैसे बिल्कुल किसी युवा गीतकार की देन है ये। ये गाना कहता है, आजा नेटवर्क के भीतर कहकर हेलो हेलो हेलो, मेरे व्हाट्सएप के तीतर कहके हेलो हेलो।

जाहिर है कि इस रचनाकार के भीतर इतनी रचनात्मक गहराई है कि हम चाहे जितनी बार गहरा गोता लगा लें, हर बार कुछ नया मिलता है, हैरानी में डाल देता है। ये धूम धड़ाक गाना फिल्म

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गुलजार साहब पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख ताहिर खान, वाचन स्वर दीपा सिंह। राजधानी भोपाल में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है। लगातार बारिश होने से जलाशयों में भी पानी का स्तर बढ़ रहा है। शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब के लेवल में भी इजाफा हुआ है। मौसम विभाग ने आगे भी कुछ दिनों तक शहर में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल में जगह जगह ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के लाल परेड मैदान पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्यस्तरीय समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य के विकास, किसानों, युवाओं और रोजगार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इसके साथ ही समारोह में उत्कृष्ट सेवाओं और अदम्य साहस के लिए पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को पदक देकर सम्मानित किया गया। जेल में सजा काट रहे कैदियों के लिए 80वां स्वतंत्रता दिवस खुशियों से भरा पैगाम लेकर आया। भोपाल केंद्रीय जेल में सजा काट रहे 15 बंदियों के अच्छे आचरण को देखते हुए आजादी की वर्षगांठ पर जेल से आजादी दी गई। 15 कैदियों में एक महिला शामिल थी। इन कैदियों को बेहतर सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी किया गया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI की राजधानी भोपाल और नोएडा में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। DRI ने 7.1 करोड़ के ड्रग्स के साथ 4 नाइजीरियन और एक भारतीय महिला को गिरफ्तार किया है। भोपाल की प्रोफेसर कॉलोनी में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर भोपाल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शौर्य स्मारक के पास स्थित अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। भोपाल के बोट क्लब में आयोजित राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का रविवार को समापन हुआ। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक स्टेडियम विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इन स्टेडियम्स के साथ विभिन्न खेलों के लिए जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 अगस्त को भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित पुण्य स्मृति कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम का आयोजन पुण्य श्लोका लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्यतिथि पर किया गया। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के विधान परिषद सभागार में संसद यूथ पार्लियामेंट 2.0 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के 58 युवा प्रतिनिधि शामिल हुए। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 के तहत आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों का समापन हुआ। इस साल आयोजन की थीम सपोर्ट ब्रेस्टफीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लानेट रही। सप्ताह भर चले कार्यक्रमों का उद्देश्य माताओं और परिवारों के साथ स्वास्थ्यकर्मियों और आमजन को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना रहा। ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन का आयोजन भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 5 से 8 अगस्त तक किया गया। सम्मेलन में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, समुद्री सभ्यता, ज्ञान परंपरा और ब्रिक्स देशों के साझा सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट मौसम, बृहत्तर भारत और ज्ञान भारतम विषयक 3 विशेष प्रदर्शनियां

0: आयोजित की गई। इन दिनों सावन का पवित्र महीना जारी है। भोपाल जिले में श्रद्धालु सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में जल और दुग्ध अभिषेक के साथ श्रद्धालु भगवान को बेलपत्र चढ़ाकर प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। वहीं सावन सोमवार के मौके पर मंदिरों में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख ताहिर खान का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रागिनी। कार्यक्रम में सबसे पहले ठुमरी सुनवाते हैं आपको, कलाकार हैं पंडित जगदीश प्रसाद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रागनी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। अब हम आपको सुनवाएंगे कजरी श्रीमती गिरिजा देवी के स्वर में, पर उसके पहले सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, आपका पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने की रिकॉर्डिंग आज 11 बजे से की जाएगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपने पसंदीदा गीत सुनने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 240-845। सागर का एसटीडी कोड है 07582। तो हमें फोन करना ना भूलें आज 11 बजे। सूचना समाप्त हुई और आइए सुनते हैं कजरी श्रीमती गिरिजा देवी से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
3: श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रागिनी में आइए एक बार फिर सुनते हैं श्रीमती गिरिजा देवी से एक और कजरी।

श्रोताओ, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग में आज हमने आपको सुनवाए पंडित जगदीश प्रसाद से ठुमरी और श्रीमती गिरिजा देवी से आप सुन रहे थे कजरी। इसके साथ ही राग रागिनी अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है। 10:30 हुए हैं। समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने का। श्रोताओ, कार्यक्रम में शामिल होंगी कुछ पत्रों के माध्यम से हमें जो प्राप्त हुई हैं फरमाइशें और कुछ व्हाट्सएप फरमाइशें।

कार्यक्रम आपकी पसंद में स्वीकारें चंचल का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की पहली फरमाइश हम पूरी करेंगे, पर उसके पहले सुनिए एक सूचना। आपके पसंदीदा फ़ोन इन कार्यक्रम फ़ोन करें, गीत सुने की रिकॉर्डिंग अब से बस कुछ ही पलों में यानी 11 बजे से की जाएगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपने फरमाइश के गीत सुनने के लिए आप हमें फ़ोन लगा सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 240-845। सागर का एसटीडी कोड है 07582। तो श्रोताओं, इस सूचना के बाद अब हम शामिल करते हैं हमारे श्रोताओं का अनुरोध। ये श्रोता हैं ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार, विनीत कुमार और कुमारी कृष्टि पटवा। जिला मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं यस बॉस फिल्म से ये गीत, और इस गीत को आवाज़ें दी अभिजीत और अलका याग्निक ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली फरमाइश जो हमें पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई, ये श्रोता हैं छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूलवाले, इकबाल अहमद, नुरेशा अहमद, कापस हेड़ा नई दिल्ली से, आमना नशरीन, लखमिनिया बेगूसराय से, इखलाख अहमद, और साथ ही कुछ और नाम हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुए इसी गीत को सुनने के लिए। ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान और अबान अब्बासी। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं, सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले के स्वर में ये वादा रहा फिल्म से ये गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली फरमाइश जो हमें प्राप्त हुई है वो चांदनी फिल्म से है, सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे के स्वर में ये गीत है। ये गीत और श्रोताओं के नाम हम आपको सुनवाएंगे, पर उसके पहले सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आपका पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने की रिकॉर्डिंग बस कुछ ही पलों में यानी 11 बजे से की जाएगी। तो श्रोता, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपने पसंदीदा गीत सुनने के लिए हमें फोन लगा सकती हैं। हमारा फोन नंबर है 240 845, सागर का STD कोड है 07582। तो फोन करना ना भूलें आज 11 बजे से। और ये अगली फरमाइश जो चांदनी फिल्म से गीत सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने, गांव खारिया ठाड़ी जिला सिरसा हरियाणा के ये श्रोता हैं, सतवीर सिंह बिजानिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजानिया, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से इसी गीत को सुनना चाहा है, मोहम्मद यासीन अंजान, सैमा नमाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नाज और बेबी चाहत ने। आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं फिल्म चांदनी से ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं। इन श्रोताओं की फरमाइश पर ये पत्र के माध्यम से हमें प्राप्त हुई। नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषि करोविन, शिवा शिवांशु, यश अवधेश, प्रेम नारायण, रमेश कठौंदिया, रमाकांत दुबे और सुजीत पुरब्याव काली तिगड्डा सागर से एक और पत्र ये मिला है। इस गीत को सुनना चाहा है श्याम रेकवार, विक्रम बादल, विनय हैरी, लक्ष्मी खुशबू, वंदना विराज, दक्ष, भूमिका कीर्ति, का हल्ले, शुभम और कालू ने। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं चलते चलते फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाज दी अभिजीत ने।